यहाँ आकाशवाणी आइजोल है और आप सब सुन रहे हैं एफएम वॉइस 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्यारे श्रोता, मैं हूँ आपकी आरजे अनु भैया। जी हाँ, फिर से आज के दिन आप लोगों के दिन जो है वो रंगीन बनाने के लिए यहाँ आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा साथ पसंद आएंगे। और जी हाँ, SMS भी भेजेंगे और कनिन कंतीती हो ले दिया दिया लंग से तेरा वो इंच। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:23 हुए हैं और ये खंड रहेंगे 10 बजे तक। तब तक मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। तो हम शुरुआत करेंगे शंकर महादेवन के आवाज में और गीत की बोल है बात मेरी सुनिए तो जरा। तो आइए सुनते हैं महालक्ष्मी अय्यर और शंकर महादेवन की आवाज में बात मेरी सुनिए जरा।

जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था दिलेर मेहंदी की आवाज में और गीत की बोल है डिक डिक डेजी। ओ चु सैले सैनो अल सिंह पकमो चु वंचन कनला हट ओवर लौदे उल्लेका लेकिन हट हूं थेन हूं चुन ए कन हट ले वियावंग अज साइल हियां कनु बॉय बॉय मॉर्निंग ले रंतिया ओई वाहन नुआम थीन एम जिंग कार कार रातिरो मॉर्निंग ले हंती हिचुमो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वइन नि चु नुआम तकिन दिखांग कन मंगले थे दोन ती ना ने मोमिन मॉर्निंग।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, हो दे उदे गंगा खले तो मई दो मनी तेरा। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की। और आप मुझे यहाँ मिला है ललदिन पुया फल कौन वेंगला यान आज ये प्ले ले तो खा नंग माता ले लो गाय खबे जों जों तान ले कछियां ते दौर पुया मी ते तान ले पार पारी पुले आरजे जों जों तान ले के वाला तान मिंग मोई ते तान कुंग ते आ ले दौर पुया कछियां ते ले दार लो न मी ते तान अरुंती नी चू आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ngori sai lo hian he hi keima photo o arunti arje nu boy kangai to che o lo dam tha la next kha ngak te pa tan liao liao arunti ya ngori sai lo hi mel tha top ve va che lo ve background nen song song nal top आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंते या मिरन काबले तो इसे लुर लाई चु मुनम दोन चुए ताई तुक दोन अरुंतिया कपुके वाला रेंग अप ओरो मेरन तिया ए कई कई कई सेन लुर ओम चु शे ओम ने ओ खलुम नेन खन नेन मो चोपल नुआ इसे तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। मैसे अगला गीत तुर हित ले मिंग का जोंग खोम दे उल्लेख मम अनल तुर रखा कन लो जोंग दे उल्लेख कचु वंचानी अनल दे उल्लेख कन जोंग। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम सुनेंगे और चांद छुपा हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत है चांद छुपा बादल में। तो आइए सुनते हैं चांद छुपा बादल में आप सभी लोगों के लिए।

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत, चांद छुपा बादल में अभी अलहुंग लेन था तरम स्कूल कंकल लाइफ लामो, सलमान खान और ऐश्वर्य राय की फिल्म है और फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके हैं सनम। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। उससे पहले हितेंद्र दास जी का संदेश पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग आरजे जी, रंतिया गुड मॉर्निंग आपको भी, और आज के दिन आपका जो है वो शुभ रहे, ये शुभकामनाएं आपको हम देते हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और हमारा अगला गीत होगा मैंने पायल है छनकाई फाल्गुनी पाठक की आवाज में। तो आइए सुनते हैं मैंने पायल है छनकाई।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था फाल्गुनी पाठक के आवाज में मैंने पायल है झनकाई। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं इस खंड के लिए, तो आप सभी लोगों से विदा लेने का फिर से समय आ गया है। तो मैं आप लोगों के पास फिर से लौट के आऊंगी 11:20 पर। तब तक के लिए आप हमारा इंतजार कीजिएगा, और इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा एलजेड साइलविन, परदेसी परदेसी तिखा वो इंजू रोनतेल वेला का नुबोये रोनतिया आरजे राजा हिंदुस्तानी मीखा रेम चुआना रोनतिया तिचुआन। इन इस खंड का हमारा आखिरी गीत होंगे राहुल जैन द्वारा गाया गया राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत, और इस गीत की बोल है परदेसी परदेसी। इसी गीत के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी और फिर लौट के आऊंगी 11:20 पे। तब तक के लिए आप हमारा इंतजार कीजिएगा और सुनते रहिएगा FM ज़ोर।

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोता, आप सभी लोगों को आपकी आरजेन्यू बोई की ओर से नमस्कार। और जी हाँ, मैं इस खंड में आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:22 हुए हैं और ये खंड रहेंगे 12 बजे तक। तब तक मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाने जा रही हूँ। और जी हाँ, हम शुरुआत करेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में जान निसार। तो आइए सुनते हैं जान निसार।

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था जान निसार और ये केदारनाथ फिल्म का है अरिजीत सिंह की आवाज में। पकूंग यानिन आजे नु बई नंग मा बोक अलोर दे इरम बिग दोन नि कारण ते मासे ओ आहा बाकी से छियारी लो पदंगा रिम्बिक लो फे विजुअली ते खानिन छियातन तो वांग खानिन खनरन एन लोरी नि हे आंग गुड बॉय हियानिन आर्जेलल नु पॉय तान कलो ओम रंगे ओ अवलुम नुआम फे कथे हाई लो ते खाई लो मुवे एम अरंतिया लो लो मुनांग किनामिन लो थोन वेला थांग ithe hai lo te chu kan e kan hu ve cha ka lo alu alum via we m an ke ni chu lum vak lo wa adwam tok che amo tu ji ha me pyar sha tha ab hum aage padhenge hamare agle geet ki aur hamara agla geet hoga mere mehboob qayamat hogi sanam puri ki awaaz mein aap sabhi logon ke liye

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था मिले हो तुम नेहा कक्कर के आवाज में, और मुझे यहाँ गुड बॉय आर जे लल नु भाई तां कलाओ ओम रंग ए हंगो रही जो छिया तो थे हाई खला कर रन थन जो नि हि हे ओ लल नु भाई दु ओम नु कला हुन छु पिका हिया ना ओ मांग तिया कला खौ छु ति तो त नि हुन छु लो इन तिया ओई अफ ताई थवे अकुंग मि न मे अकुंग मि न फै छु थुम दु रो पुइसे ए फे फ हन चा कोम एम एम फे good boy chu nei tai thapik le mai ave po cha ko mala mala to ji ha mere pyare shrota ab hum phir aage badhenge hamare agle geet ki aur hamara agla geet hoga maine pyar kiya film ka geet aur geet ki bol hai aate jaate to aaiye sunte hain aate jaate haste gaate

सही कन लो शिवे तो ने जुमम ते जान यहां सिर्फ नंबर मिला है वो लिखता है हाय आरजे मैं पूर्णिमा सिन्हा का सन अरिजीत मोजा बुंदेया ये गाना सुना दो आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आप क्या लिखना चाहते हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आपके लिए कोई कष्ट में हो तो फिर आप अलग सा संदेश फिर से भेजिएगा ताकि हम ठीक से पढ़ सकें तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता हमारा अगला गीत होगा अकेले हैं तो क्या गम है कयामत से कयामत फेम का गीत

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुने था वो था अकेले हैं तो क्या गम है, और कयामत से कयामत तकवीम का गीत है। गुड बॉय हन मा इच यार पेचन एस एम एस कंग आते हैं महीने का लो थोन से लंक का एस एम एस इच यार हियान नुआम नेक्स्ट पुजाउ ते ते नु पाजाउ नुआम बेराम बेराम पुमवाल एस एम एस खोई वे आई लो ते तान ले पकुंग ले तान और अंति अ गुड बॉय हियान कनवान लोम ट्रेन तक एम तो चाने ने नंबर चे अलो लंगा मासे मिंग हि मारे माने मेरा यो वन अलवे रंति अ कनवान लोम एम खन ओ छेते नलिन लोती ह कन लोम पुए एलजित साइ लो हियान अकेले हैं तो क्या कम है अमोय रई रई वे अहुन लाइन आ तिशे छवा करंती ने अहुन लाइ से हाउ खचाने इन गाय खपा आलुंग लेम था खप मैत्रम जानिन आप हम आगे बढ़ेंगे। मैंने प्यार किया फिल्म का गीत ने चिन्ह मीखा म्यूजिक चो ने तुना चाना लागा रंती अंग आते जाते हंसते गाते।

जी हाँ, मैं फिर से आप लोगों के पास लौट के आऊंगी आज दोपहर को 2:35 पे। उस वक्त मैं इससे भी खूबसूरत गीत आप लोगों को सुनाऊंगी, और इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा आतिफ असलम की आवाज में। गीत की बोल है पहली दफा। इसी गीत के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ।

नमस्कार मेरे प्यारे साथ, आप सभी लोगों को आपकी आरजे अनुभव की ओर से आज के हमारे आखिरी खंड में नमस्कार। और जी हाँ, इस खंड में मैं आप लोगों को हिंदी का अलग अलग फिल्मों का अलग अलग गीत सुनाने जा रही हूँ। तो हम शुरुआत करेंगे राहत फतेह अली खान के आवाज़ में मन की लगन। तो आइए सुनते हैं मन की लगन।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था शादी का लड्डू फिल्म का गीत और सत्यदेव बर्मन की आवाज में मुसु मुसु हंसी देव। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की और मारे मही थे अरंती लोम चिंतक है लौंगाई था चर चर रुलाधार थुम थे प्रोग्राम कन लई दो चुवा चल लमोई तक तक ते गन लरम प्लेजेल दो ने चन दुर्गेश नागन पूरे लिखते हैं गुड आफ्टरनून आर्जे नमस्कार आपको भी हमारी और से हमारा प्यार भरा नमस्कार पसल नहीं खचु हो तो मेरु इन पसल ते नन लौंगा खेल तो चे रंति बुर मैं कैसे मिन खाख लेल मियाला खाख लेल तू खा नमरी लो मम tichani lal din puya fol kon veng la hian rj play le tur kha nang ma ta le lo ngai khlap ve zong zong ta le ka thian te veng sang sang a mi te dar lo na kapu om puya kapu om ngro dar lo na kapu om pui te ti meyang om pui te ti boxia chung tan le rj zong zong ta lal din puya fol kon veng lai fm ngai sang mm tu hian aron tipoka kanwa han long thren ta kem paku nga hiane minron ofi ka tum le de le ka ni ka ri nga je no bai lo come back le ta mom hey lo wa ka fe a bun buna hun to tat mai ka bu a oye aha thak thiar lak lo lai lai thalak ki ron thon box se login scroll qual fail na sam se a i ho ko nga film khur la dam takin in in kheng don ne good afternoon ron ti a ap go be very or se good afternoon a ke chu coming it here ve du la ron ti ta vi kong te hi due due kan chiar ma ti lai kan lo chiar la ni ma तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की और हमारा अगला गीत होगा वो लम्हे। तो आइए सुनते हैं वो लम्हे।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। पिछले बार जो हमने सुना था वो था आदत फिल्म से, और गीत की बोल है वो लम्हे। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और हमारा अगला गीत होगा जोश से, और गीत की बोल है कभी। तो आइए सुनते हैं कभी।

0: जब यार जुदा हो जाता है, जब यार खफा हो जाता है, मांगो तो मौत नहीं मिलती, जीना भी सजा हो जाता
1: है। आकाशवाणी आइजोल एफएम से वैसा कोई पसरिया टंगा पहुंचवानी वैंजुन निथुम सांगनी सोमनी परुप नि लाइनी या कनहुन वै खतन चुगन जौले ता ngai khatu de chunga lom thu gan soe kanhun vai ni na hi tlai dar li le chan ve tangin kan tran le ngai lo ngai kha le vek don ya hun man pui tu cheu hi lom sang zoli fa nai ka ni ya control room in charge hi engineer la rin ti ke ni in zawa in hun man no vek u le
2: hei akashwani aizol ni tuna chuan chanchin thar hindi apuan delhi milak chon kan ngai thla anga hei hi chanchin thar sap tonga puan delhi mi lak chon in ronzuyang

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिये में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और पीड़ित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार के रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
2: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रतिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें ऋतव्रता बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथ गंज से विधायक अखुजनाम को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृहमंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंग्यांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Twenty-one people lost their lives and 40 others were rescued after a fire broke out at a hotel in Malviya Nagar in Delhi this morning. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, the Prime Minister said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced an extra ratio of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund to be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Prime Minister Narendra Modi today met the chairman of the Rashtriya Swatantra Party of Nepal, Rabi Lamichhane, in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that Nepal is a priority partner under India's Neighbourhood First policy. He added that India looks forward to collaborating with the new government to elevate the special and multifaceted relationship between the two countries to greater heights. The Prime Minister also welcomed the desire of Mr. Lamichhane to work closely together for a shared and prosperous future. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said the tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
2: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी और कोई पेड़ के मंच के रहते रहते हैं उनके कोई जमीन नहीं जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है
3: West Bengal's former ruling party, the Trinamool Congress, is in turmoil and on the verge of split. Expelled TMC MLA, Ritobrata Banerjee, claims the support of nearly 60 MLAs, a number that could decisively shift the control in the assembly. His faction has already written to Speaker Ratindra Bose, asking to be recognised as the real TMC. In a counter move, TMC announced Shobhandev Chattopadhyay as the leader of the house, with Ashima Patra and Nayan Bandopadhyay as deputies, and Farhad Hakim.

कारकोल की एक सड़क पर दो साए हैं, अंधेरे की नाजायज औलाद है शायद, घूंट घूंट खून पी कर दोनों पले हैं शायद। पातले जमीन है न सर पे आसमान है, जिंदगी कुचल गई ये उनकी दास्तान है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उमते। समय हो रहा है शाम के 4:30 बजे और हम सुनने वाले हैं हिंदी फिल्मों के गाने। और इस बार हम सुनेंगे बहुत सारी फिल्मों के गाने। और सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। ये इस बेहतरीन गाने से हम इस भाग की शुरुआत करने वाले हैं और मैं आशा करती हूँ इस वक्त जो भी हमें सुन रहे हैं आप सभी को ये गाना जरूर पसंद आएगा। आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।

आंखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। कुमार सानू के दिल को छू लेने वाली आवाज में हमने ये गाना सुना। आगे बढ़ते हुए हम और भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ललदिन पुया फल कौन वेंगलाई का सबसे पहले मैसेज आया है। मिरन थन मस सबे और तू ही कंसियर मस सबे रंगे आरजे इ प्ले ले तुर खा नंग मातान ले लवाई थवे जोंग जोंग तान ले कथियान ते वेंग शंग शंग मी ते तान अरोन दिनी ललदिन पुया फल कौन वेंगलाई मी हियान मो पिछुआन वी कुंग ते या आरजे पियो मोम विन ड्रेस दानी का दू थे या नेक्स्ट खपुरा मा तुय रियल अलो दम जेल थे नान ओ अरोन दिनी ए चोंग चाइना पोकन लव शरेंगा निया ओ हेलेन जेटी के ई ने लिखा है आज ओम ते ओम जिया शेलो मईला आंखे भरी भरी ती छु अमोय थौ थौ ओम जतलांग पुई मिलाव शिल अथु कियान लुंगा तिलेंग वेरिया वनी हेलेनी अतिनी मो ए खै लुंग नुर तका ओम लाया इ नुई तुरा इन ती लिम तुरा इन ती हि हरानि त्रो चुमि ला चो ने मै ओ मोय मुन पुई हियान आज ओम ते चिबाई ड्यूटी नोमले ओनंग पो मे मोय ते या विकुंग ते या ngak te pa te tan tetanle nangma ta daron tini moi mun puyan kawan lom thin tak em oi in fel liam liam thin mange ti emi pachua win arjom te namaste aapko bhi namaste i play le turkha fm run bel tu zong zong le itano bahut bahut shukriya aapka bhi meng moi te hian om te namaste duty nuam le khai aapko bhi namaste aap sabhi ke liye ye agla gana jo main aapko sunane wali hu agla gana jo main aapko sunaungi wo hoga बहुत सारे गाने इन लदू तुरी का तो पमो आइए सुनते हैं। प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी हम नहीं थे कभी तुम नहीं थे, जो कि काजोल और अजय देवगन पर फिल्माया गया था अलका याग्निक की आवाजों में।

प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी हम नहीं थे कभी तुम नहीं थे। आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये मैसेज आया है टीवी पचोवार जो हम ते प्ले ले टूर का कन मेंबर रबतु रियल तुना जेबो बोक आसी यु ओमे कलो दम ले थे नान लेगा खे तु जोंग जोंग ले इतान और रंदिनी ए खे आईसी यु ओम ती पोक लाउ शरे रेंग ले नेम ए खे चोंग चाइ ना रिलो चोंग चाइ ना लाउ शिम मलंग ओ खोई थाक ए मे रम ही मे मोय ते यान ओम ते हाउ तुनु ती एमी पचवाउ ले मोया मुन पुइतान ए इन हाउ तुनु नि ले तो लो हाउ टू ही नै सांग थु आ वे तरो आ मिसिंग अ जुरियान आ निरा से ओ ती एमी खान लौ श्या मो लोम लेंग छु अगला गाना हम सुनेंगे ए काश के हम कभी हां कभी ना से।

ये था अपना बना ले भेड़िया मूवी से, जो कि वरुण धवन और कृति सैनन पर फिल्माया गया था। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे जो कि इस बार का आखिरी गाना होने वाला है, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। विजयपथ का एक खूबसूरत गाना आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और उन सभी के लिए भी जो हमारे साथ इस वक्त नहीं जुड़ पाए लेकिन बाद में जुड़ेंगे, आप कह दीजिएगा। ठीक है, और ठीक इसके बाद हम आपको सुनाने वाले हैं वेस्टर्न म्यूजिक, और कहीं मत जाएगा, जुड़ी रहेगा FM ज़ोए के साथ।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे उम्दे। समय हो रहा है 7 बज के 7 नहीं बजे हैं, 6 बज के 40 मिनट, और हाँ ये सिलसिला जारी रहेगा 7 बज के 10 मिनट तक। और इन 30 मिनटों में हम आपका खूब मनोरंजन करने वाले हैं हिंदी फिल्मों के गानों द्वारा। और सबसे पहला गाना जो जिससे मैं आपका मनोरंजन करने वाली हूँ वो है दिल क्यों ये मेरा शोर करे। काइट्स मूवी का एक खूबसूरत गाना ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया था। आइए सुनते हैं और शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने से।

दिल क्यों ये मेरा शोर करे। ये था के की आवाज में, और फिल्म का नाम है काइट्स, और जिस पर फिल्माया गया था मैंने आपको बताया, ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ। आइए आगे बढ़ते हुए हम आपके मैसेजेस की ओर बढ़ेंगे, और सबसे पहला मैसेज जो आया है गुड बॉय ने हमें लिखा है। गुड बॉय मैसेज श्रोते मसबे रहा नहीं है नार्जे उम्ते कपूर वेता ठीक हो रुम रुम दोनों लोम रिल टाम दे उपेजान मो नेक्स्ट खा नाकते फालल दिन पुया फल कौन वेंग लाई पकूंगा पकूंगा ती तुर जोंगे पकूंगा वी कुंगते या नूरी साइला ओमेगा सांगते या मिंग मोईते या पुजाउते या ते नूपाले पुलूंग मोना जो नुआम बेराम पुमुआल दे तान ओ अरों दिया एफ एम जो ओयन गाई थन सा एस एम एस अन खोई लाओ अवन छले जुआल एम मो क्ले मिन अन सीनियर वे दो तो आरों दिया ए खाई कन वन मिन लाओ लुट सक ही कन लोम तक जेत अनी ओ तुई दे उखान मिन लाओ गाई थाक सक दोन निया अनी तान लिया लिया भैन कन रों थन सकेंगे। अगला गाना जो हम आपको सुनाने वाले हैं वो है जिंदगी दो पल की।

जिंदगी दो पल की ये था के की आवाज में। अगले गाने की ओर हम बढ़ते हुए सुनेंगे एक और खूबसूरत गाना जो कि मैं आपको इस स्टूडियो से बहुत बार आपको सुना चुकी हूँ, लेकिन इस बार हम सुनने वाले हैं 90s के दौर का एक सुपरहिट गाना, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। प्यार तो होना ही था का ये खूबसूरत गाना मैं स्पेशली डेडिकेट करूंगी आरजे जोदिनी को। आइए सुनते हैं, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे।

ये था, प्यार तो होना ही था मूवी का खूबसूरत गाना, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। लदिन पुया फल कोन वेला का मैसेज है, आज ये प्ले ले तुरखा नगमा तान ले लवा इतला वेसंग जों तान ले के छान ते वे शंग शंगमी तान अरोन ती नी ओ एफ एम वाई सांग एम एम तो लदिन पुयन अरोन थन सक अनी। आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे एक और खूबसूरत गाना, और वो खूबसूरत गाना होगा टार्जन, ओ माय टार्जन। जी हाँ, ये खूबसूरत गाना आप सभी के लिए।

हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, बरसात मूवी का एक खूबसूरत गाना कुमार सानू की आवाज में, और ये फिल्माया गया था बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना पर। आपको याद ही होगा 90s के दौर का ये सुपरहिट गाना था और सुपरहिट फिल्म भी थी। आगे बढ़ते हुए इस भाग के आखिरी गाने

0: की ओर हम जाएंगे और सुनेंगे जादू है नशा है शान और श्रेया घोषाल की आवाज में। इसी के साथ मैं आरजी ओमती आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी बहुत जल्द यानी कि 8:02 पर। कहीं मत जाइएगा क्योंकि उसके पहले भी आपको बहुत कुछ सुनाना बाकी है। जुड़े रहिएगा FM जोए के साथ।
1: ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।

0: जग
1: सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: दिस इज आ

0: tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
1: Thank you very much.
2: Thank you.
0: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
1: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, we're almost twice the population of the United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
0: Absolutely. Mr. Tandon.
2: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में जी उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है टैक्स में छूट जीएसटी का सरलीकरण डिजिटल क्रांति हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा जीएसटी रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें उज्ज्वला योजना की बात करें जनधन योजना की बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें सामाजिक सुरक्षा की बात करें पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया
0: जैसे भी शरद जी ने
2: बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है
0: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं तो There has been a significant expansion of the middle class in the last 12 years with more than 25 crore people exiting multidimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharadji?
1: I think it's a huge achievement because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than, Anubha, the population of many of the countries around the world. और देखिए हुआ क्या कि पॉवर्टी इंडेक्स की जो डेफिनेशन बदला गया यू नो वी चेंज द डेफिनेशन बिकॉज आप पॉवर्टी को पहले कैसे डिफाइन करते थे इतने रुपए रोज का आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है यू नो ऑन न्यूट्रिशन ऑन हेल्थ आपके पास घर नहीं है टुमारो यू गेट अ हाउस यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीइंग यू नो सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट यू नो जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत सो आई थिंक नाउ देर आर टॉयलेट्स एट सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड एंड लिव अ लाइफ स्टाइल विच एनी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास लिव्स सो आई थिंक दैट हैज बीन द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पॉवर्टी बिकॉज दोज पीपल financially fine they may be earning whatever they earn but today they have facilities which are probably being enjoyed by

0: some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities,
0: absolutely,
1: which is everybody's right and which should they should get.
0: No, but the thing is that me and you can call them basic. But for them, it was a luxury at one point of
1: right.
0: time. And today they feel that these were basic amenities, which I was lacking. And it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas mm-hmm. Yojana, you know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just named all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analyst, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle-down effect. That has impact har work ko samaj ke usne fayda pachaya aur middle class to usme aati aati kyunki isse naukriyan bani hain, isse logo ki income. Aur main aapko bahut interesting baat bataun jo Tandon sahab meri baat se agree karenge ke ab mujhse jab log poochte hain kyunki hota kya jab aapki zindagi mein ye sab ghatnaen ghatti rehti hain welfare schemes, to you take it in your stead, aapko lagta hai theek hai ye to hona hi tha bhai, ye to mera haq hai wagaira wagaira, aise khayal aate hain. Par bahut acha tarika isko dekhne ka kya, which I am sure the listeners of Akashwani would like to dwell upon and deep dive is ke aap 2014 mein जब ये सरकार आई 12 साल पहले आप कहां खड़े थे. शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं. तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी. सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है.
2: मैं आपकी बात कराने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं. आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है. और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया. मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी.
2: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है. तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं.
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है.
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभा. देखिए, गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभा, वो तो सरकार उतनी देगी. आप देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं.
1: बिल्कुल.
0: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैनॉट एम्प्लॉय एवरीबडी इन द कंट्री. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट. टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है. And I think a lot of people said that Startup India, you know, people have been doing businesses here for times immemorial. So what is new? Yes, there was something new because startup focused on innovation, startup focused on new ideas. And that is where the youth of the country or the youth intellect of the country got activated. And a lot of youngsters, and today just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund,
1: yes,
0: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here government became an angel.
1: Right.
0: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today I'm telling you, when from being job seekers,
1: yes,
0: to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in,
1: yes,
0: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. You borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs. You know, you'll be surprised, the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as a very, very active GDP.
1: In fact, actually,
0: we did an analysis recently which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
1: right,
0: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati hai, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean, people have opened their arms and embraced it. पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ गया है।
1: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है. बिकॉज यू नो सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन यू नो अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स. सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी, नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, बट आफ्टर दैट लास्ट ईयर वी सॉ द जीएसटी 2.0 ऑल्सो, हाउ हैव दीज टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स इन द पास्ट decade impacted middle class. So Tandon, what would you say to that?
2: देखिए, इसमें एक और पहलू भी है
1: जी,
2: कि जो पेंशनर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाया जाता है उस महंगाई के इंडेक्स के साथ मिलाकर. तो टैक्स रिफॉर्म जो है आपने जिनके जिक्र किया, उससे भी हम लोग अपनी मिडिल क्लास की बात करें, हम लोगों को 40-40, 50-50 हजार रुपए साल का टैक्स बचा है. तो हम भी मिडिल क्लास हैं सब लोग, तो ये जो लाभ मिला है मिडिल क्लास को और जो टैक्स के बारे में जितनी भी बातें हुई हैं, तो ये सब कुछ मिलाकर अगर देखें तो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास आज बहुत खुश है. और शायद मिडिल क्लास की 4-5 लेयर्स को भी अगर रहे, अपर मिडिल क्लास की अगर अभी बात छोड़ भी दें, तो लोअर मिडिल क्लास को मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा होगा.
1: शरद जी, यू नो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स, इट्स नॉट जस्ट द एग्जेम्पशन, यू नो दैट द एग्जेम्पशन लिमिट हैज यू नो इनफैक्ट चेंज 4 टाइम्स, इट हैज इंक्रीज 4 टाइम्स सिंस 2014, बट इट्स ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स, इट्स द प्रोसेस ऑफ यू नो द ट्रांसपेरेंसी दैट हैज बीन ब्रॉट इन दिस होल प्रोसेस. सो वट वुड यू से टू दैट, हाउ हैज इट मेड द लाइव्स ऑफ द मिडिल क्लास you know, much easier. And not more than that, would you say that, you know, the fact that the government has made the process so easy, and if we look at the number of ITRs filed, in fact, last year, just last year, more than 8 crore ITRs were filed, that's also showing the government

0: the Modi government's trust in the people, in their honesty. And it's a salute to the middle class.
1: All right, we call that a Sabka Vishwas. A government has gained that Vishwas where people come forward and file. And I'll give you a very interesting, you know, dynamics of this whole tax, you know, number which you spoke of.
0: Ji.
1: About 9 crore returns were filed. And you know, the real taxpayers, the people who actually paid tax, they were about 3 crore or so. But then because it's mandatory to file the return, so people participated in that activity, people came forward, and they've now understood with 12,75,000 rupees of income for the first time in India is tax exempt. You know, we did a case study of a couple who were both earning, one was earning about 5 lakhs and the other was earning about 7 lakhs, about 12 lakhs of earnings. Now, they were not able to save for earlier for investments, for SIPs, for health insurance. Combined together, they saved tax about a lakh of rupees. Now, this lakh of rupees is going into health insurance, is going into insurance, is going into their retirement planning as well. And you know, it'll be unfair, Anubha, if when we talk of tax and we don't talk of the tax savings made by GST. Somebody asked me that only 3 crore people in India pay tax. I said, no, every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation. So this GST 2.0 has put money in the pockets of people. And because primarily we are a consumption-driven economy, 55 to 60% of our economy comprises of me and you, and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers, from service providers. So I think that has taken a big boost. And in the current scenario, when global economy is facing challenges, it is the Indian consumption, Anubha, which is driving the growth of the country.
0: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli?
1: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
0: Financial inclusion?
1: Absolutely. You know, Jan Dhan Yojana, more than 56 crore accounts, and these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
0: Yes.
1: I think this has been transformational. And a lot of countries around the world now want to emulate that example.
0: Absolutely.
1: So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
0: Ashok ji, aap kuch kehna
2: chahte hain? Main ye kehna chahta hoon ki ye Jan Dhan, Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikli hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ.
0: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
1: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
0: डिजिटल डिवाइड, जिसको
1: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन. एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग. प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. कैसे ये कोविड में हम करते पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती. बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ. आज भी प्रधानमंत्री जी हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज
0: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम
1: जो काम किया है उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे। सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली मुंबई बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं। दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन।
0: अशोक जी आप कुछ कहेंगे?
2: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया सुशासन और भारत के जो प्रशासनिक आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है।
0: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
1: Oh, it's done in a huge way because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubhav, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा। आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा। अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे। आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है। आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट पहुंच रहे, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल। द थिंग्स वी यूज टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती है, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कम्फर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री।
0: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक। जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अशोक जी पहले आपसे।
2: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
0: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल

0: रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही हैं उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है।
1: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
0: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle-class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle-class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
0: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं। और महिलाएं, चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्व इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग। एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। आई फाइंड लॉट ऑफ वुमेन, एज मिस्टर टंडन सेड दैट यू नो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है, जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं। ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
0: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा. बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट. अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है. तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं. पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं. तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है. और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा.
0: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है.
1: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है. मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास. तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए. द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
0: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
1: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग. इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044. In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on Air. This program is also available on our YouTube channel News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आज ये ओम तेई। समय हो रहा है रात के 8:04 और ये सिलसिला जारी रहेगा 8:30 तक। और इस भाग में भी हम आपको खूबसूरत गाने सुनाने वाले हैं, और वो भी हिंदी फिल्मों के गानों। जी हाँ, और इस भाग में सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाऊंगी वो है सैयारा मूवी से बर्बाद।
1: मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी।

ये था होना जाए प्यार तुमसे बर्बाद सॉन्ग सैयारा से। बहुत ही लोकप्रिय फिल्म थी दोस्तों, गाने भी बहुत ही लोकप्रिय बने, उन्हीं में से एक था। हेलेन जत्ती के ने लिखा है आज हमते नेक्स्ट खा आज ही मिकी ले नगमा तान लिया उ लिया उ कराने हैरान थी देवा तिलो वम ठीन है ओ हेलेनी कन लोम तक सेट। ओ चलिए अगला गाना जो मैं पेश करने वाली हूँ वो स्पेशली मैं हेलेन जत्ती के को मैं डेडिकेट करूंगी, और हम सुनने वाले हैं मैं अगर कहूं।

ये था ओम शांति ओम से मैं अगर कहूं तुम सा हंसी। शान के खूबसूरत आवाज में हमने ये गाना सुना। अगले गाने की ओर हम बढ़ते हुए सुनेंगे। कौन सा मैं गाना आपको सुनाऊं? इस बार हम सुनते हैं तू जाने ना आतिफ असलम की आवाज में।

हम आप जुड़े हैं एफएम जॉय पर, आपके साथ जुड़े हैं आरजे उमदई। आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गाना हम सुनेंगे, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी का एक खूबसूरत गाना पलक मुच्छल की आवाज में।

इसी के साथ दोस्तों मैं आरजे ओमते आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी बहुत जल्द यानी कि 9:30 बजे, और ठीक इसके बाद हम आपको सुनाने वाले हैं मिजो डिवोशनल सॉन्ग्स आरजे मिकी के साथ। जुड़े रहिएगा एफएम सॉरी के साथ।

हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एफएम जॉय पर। आपके साथ जुड़ी है आरजे ओमतई। इस भाग में भी हम आपको सुनाने वाले हैं हिंदी फिल्मों के खूब सारे गाने और सुपरहिट गाने हम सुनेंगे, जो कि बहुत ही लोकप्रिय भी है। सबसे पहला गाना जो मैं आपको सुनाऊंगी वो है हमदर्द, एक विलन मूवी का ये खूबसूरत गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। और

दोस्तों, ये गाना सुनने से पहले मैं आपके मैसेजेस पढ़ूंगी। हितेंद्र दास ने लिखा है कि इनको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, ये आकाशवाणी जो ओए को बहुत पसंद करते हैं। और इन्होंने लिखा है, चिंता ता चिता ता।

जरूर प्ले करेंगे। हितेंद्र जी हमारे साथ बने रहिएगा। ललित प्रिय फलको ने लिखा है आर जे ई प्ले ले तुर खा नंग तान ले लौ थवे जों जों तान ले कछ्यांते वेंग संग संग मी तान ले ओ कछ्यांते दोर पुय मी ते तान अरोन थांग करोन थांगे अति नि ललित पुय ग्यान मो ओमी गा सांग ते ह्यान छच्यांग ते दर्स अ लांग आइ थाई लाइ फिल खा आ ngai thatu te tan le tan le le waron tia ni chi kha ka play to a ter jin la kai lo ngai thla fu chi lo deu aniang mo apa han poi chin tak em o ka play non thei to si lo mo min lo che thia me niang chu tro ka play le tur hin al don le tuk lo ngai thla de don ya teri meri kahani gabbar is back se jo ki akshay kumar aur karina kapoor par film aa gaya tha teri meri kahani arjit singh ki

अगला गाना आपको पता ही हो चुका होगा कौन सा गाना मैं प्ले करने वाली हूँ। विंग मोइते ने लिखा है ओम ते इतान ले लल दिन पुया फल कौन ता नरों तिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चेला जामा ने लिखा है दुम ते थ्लोंग टकिन हो अंग चे रों तिया ओ नमस्ते रों तो आहे लाए अचुंग ही गलाउ चार लवन ही। नेक्स्ट सॉन्ग का इतान लेकर गई एम एम आर जे का आर जे दू तक आर जे वी एल इतान सियाल वूम थू रिन कन थन सक नाप नाप गे रों तिनी ए चे लो गई थांगे बी से ओ अभी कहाँ सांगते हैं यान कैसे मैं इच्छा शिम शिम पोखा कलोम है कलोम छीने कलोम छीने के एयरबैग थे लाओ ओ के सही बैग सेंग लाओ इपे तुरखा में मोई ते पर पारी पू ते पा बिल को थियर ते तान ओ नंग मा भाई हाउ लव यू नरन दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया ओमेगा आपके लिए भी। अरु खेन कन लो कि वो जेलनी मैसेज छ्यारी जानवा कलोम छीने। आगे बढ़ते हुए सुनते हैं राता लंबिया शेरशाह मूवी से।

राता लंबे यहां जुबिन नौटियाल की आवाज में शेरशाह मूवी से अगले गाने की ओर बढ़ेंगे और बिना वक्त जाया किए हम सुनेंगे तेरी आंखों से अपनी नजरें हटाऊं कैसे। जनिता गांधी और सनम पुरी के खूबसूरत आवाजों में हम सुनेंगे ये अगला गाना।

इसी के साथ दोस्तों हम पूछ चुके हैं इस भाग के आखिरी गाने की ओर जाते जाते, क्योंकि ये हमारा आखिरी भाग है। तो हम सुनेंगे जाते जाते तुम मिले मूवी का ये टाइटल ट्रैक, इमरान हाशमी और सोहा अली खान पर फिल्माया गया था। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, वापस मैं आपसे जुड़ूंगी अगले हफ्ते बहुत जल्द। तब तक खुश रहिएगा दोस्तों और स्वस्थ रहिएगा, जुड़े रहिएगा FM ज़ोए के साथ।